गावड़ी सुखमनी महला पंजवा सरोग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ गुरन में है जुगाद गुरन में है सतगुरन में है।

ने यात्रा सफली करनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जिन्हां जिन्हां गुरमुखा वालों गुरु महाराज जी दे हजूरी विच भेटावां हाजर होईयां उन्हां गुरमुखा नूं गुरु महाराज जी दे हजूरी विच सिरे पाव दी बख्शिश होवेगी। सिरे पाव लै के गुरु महाराज जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। सात संगत जी, श्रीमान संत बाबा हरचरण सिंह जी नानकसर कुटिया त्रिपड़ी पटियाला तों अते समूह सात संग

جملہ فوز نور حق حق آئینہ خالصو بے کینہ باجاں والے ستگرو تن تن تن تن صاحب ستگرو گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ جی دے پوتر استھان تخت سچ کھنڈ श्री अवचल नगर साहिब हजूर साहिब नदेड़ विखे सतगुरां दे इस पवित्र तख्त विखे दरबार विखे सच बैठी सात संगत जियो। सतगुरां ने महान बख्शिश कीते, भागां वालियां घड़ियां लियांदियां, संगतां दूर दरेड़ियों हजूर दे पवित्र तख्त दे दर्शन दीदारे करन वास्ते साध संगत जी आईया ने। गुरु का जस गुरु की वड्याई श्रवण करके अपने जीवन नू सफल बना रही हैं। सतगुरां दे पवित्र दरबार दे दर्शन मेले करके साध संगत अपने जीवन नू पवित्र करन दा यतन कर रही हैं। सतगुरु मेहर करन, आओ अज दे इस पवित्र बचन जिसका पवित्र पाठ आप जी ने हुणे ही श्रवण किया है। ये पवित्र बचन धन धन धन धन साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह जी का साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दे अंदर सारंग राग अंदर सुभाए मान है। गुरु साहब जी ने इस पवित्र बचन विच की कृपा कीते, केड़ा उपदेश बख्शिश कीता है, आओ सारे सतगुरु मेहर करन। सारे मनोबिरतियां एकागर करदे होया एक बारी आसीस बख्शिश करो, गज के आखो जी।

0: अर्जुन देव महाराज इस पवित्र बचन जेड़ा इस शब्द विच रहाउ दी जो पवित्र पंक्ति है उस पवित्र बचन विच कृपा करदे ने रे पापी कहन लगे ऐ मैले मन वाले पुरुष ऐ गुनाहां नाल लिपत पुरुष ऐ हर वेले माड़े विचारां विच गलतान रहण वाले पुरुष मैं तेनू एक गल पुछदा हां। पुछया जी महाराज की पुछना चाहते हो? सतगुरु कह लगे तैं कवन की मत लीन मैनू एक गल दस, तू किस दी मत लई है, किस दी अकल दे पिछे तुरिया फिरदा है, तेनू कौन गाइड करदा है, तेनू कौन सिख्या देंदा है जिस करके तू इहो जिहा जीवन ज्यों रहा है।
1: निमख करी ना सिमर स्वामी।
0: कह लगे एक निमख मात्र भी कदी एक घड़ी एक निमख उस पर स्वामी दा उस परमेश्वर दा कदी तू सिमरन नहीं कीता, कदी तेनू उस दी याद नहीं आई जिस परमेश्वर ने तेरे ते बहुत वड्डी किरपा की थी।
1: जियो पिंड जिन दीना।
0: कहिंदे केड़ी किरपा की थी परमात्मा ने? फिर वो दस दे ने तेनू जियो, जियो दा मतलब है जिंद जान, पिंड दा मतलब है शरीर। कहिंदे जिस परमात्मा ने तेनू जिंद दित्ती तेनू शरीर दित्ता तू कदी उस परमात्मा दी उस वाहिगुरु दी वड्याई दे कीते कदी उस दा सिमरन नहीं कीता, एक निमक एक घड़ी ओदे लई वक्त नहीं कढ़िया। ख्याल करो सात संगत, भावें असी जीवन विच बहुत कुछ मंगदे रहिंदे आ और गुरु साहिब कृपा करके सानू देंदे भी रहिंदे हन, पर मंगण तो पहला भी सतगुरां ने सानू ऐसियां दातां दित्तियां ने जिहड़ियां असी मंगियां नहीं सन, जिहड़ियां उन्हां ने सुता सुते सिद्ध परम पिता परमात्मा वाहिगुरु ने सानू बख्शिश कीतियां। ओ केड़ियां केड़ी दात है? सब तो वड्डी दात है बंदे नू शरीर दित्ता, इस शरीर वर्गा होर कोई शरीर नहीं। इस शरीर नू सतगुरां दी बाणी विच दुलब किया गया, कहन तो भाव उत्तम सर्वश्रेष्ठ, और कहिंदे ने इहदे नाल दी कोई चीज नहीं है। पुछया जी इहदे नाल दी क्यों नहीं चीज? कहिंदे इस करके क्योंकि इस शरीर विच रह के बंदा नाम जप सकदा है, इस शरीर विच रह के बंदा सेवा कर सकदा है, इस शरीर विच जे प्राप्त होवे तां पुन कठे करके अपने मालक दी कृपा दा पात्र बन सकदा है। इस करके इह शरीर दुलभ है। असी बचन पढ़दे हां भगत कबीर साहिब दा, ओ कहिंदे कबीर मानस जन्म दुलंब है, मनुख शरीर बड़ा बेशकीमती है। और ए भी वचन कीता कहणगे जरूरी नहीं है वार वार मिले, ए कोई जरूरी नहीं भी वार वार मिले। मां कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारे बार ज्यों बन फल पाके पोएंगिर बहुर ना लागे डार। कहिंदे जिवें पक्के होए फल रुख दी टाणी तो टुट के थल्ले डिग पैण, अनेकां यतन करन दे बावजूद भी वो टुटे होए फल दोबारा टाणी नाल नहीं लगदे। इसे तरह मनुखा जीवन है, जे एक वारी खुस गया जरूरी नहीं है दोबारा ये मिले। इस करके गुरु साहिब कहिंदे पढ़िया उस मालक ने तेरे ते बहुत वड्डी कृपा कीती है, तेनू शरीर दित्ता है, तेनू जिंद दित्ती है, इस करके तू उस परमात्मा दा सिमरन करिया कर। ते जे तू नहीं करदा सिमरन फिर कहिंदे ने इहदा मतलब तू इस जीवन दी इस शरीर दी इस जिंद दी कोई कीमत नहीं जानी, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਦੀਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਤੁਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਜਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀਉ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਦੀਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਪੁੰਚਦਾ। ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੋਂ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤ ਜਾਣੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਰਹੇ ਆਓ ਭਾਵ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ

आस रख के तेरे चरणा विच आया। और चेते रखियो जेड़ा बंदा आस रख के पूर्ण भरोसा रख के गुरु के चरणा विच आ जावे गुरु कदी उसनु निराश नहीं करदा, कदी निराश नहीं करदा। भाई गुरदास साहब वचन करदे ने कहिंदे किसे वेले भी आ जा, गुरु ते भी नहीं कहिंदा भी तू बचपन विच नहीं आया ना ए उलामा देगा तू जवानी विच नहीं आया। हां चंगी गल जे आ जाइए ते जवानी गुरु परमेश्वर लेखे ला लाइए उहदे वर्गी तां रीस ही कोई नहीं, पर गुरु नहीं उलामा देगा। जदों भी आएगा गुरु उदों ही तेनों अपने गल नाल ला लै। भाई साहब भाई गुरदास साहब वचन करदे ने कहिंदे जैसे नाओ बूढ़त जोई बचे सोई भलो, बूढ़ गए पाछे पछतायो रह जात है। जैसे कर लागे आग जोई बचे सोई भलो, जरे बूझे पाछे कस बस दा बसात है। जैसे कर लागे चोर जागे रह सोई भलो, सोए गए रितो कर देखे उठ प्रात है। तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवे पावे मोख पदवी नदर बिलला। कहिंदे इसे तरह तेनू उदाहरण दित्तियां, कहिंदे घर विच लगी होवे अग जिन्ना समान बचा सकदे हो बचा लो ओही लाहेवंद है। घर विच आ वड़न चोर जे खड़का सुन के रात कोई जाग पवे भला है, जिन्ना घट्टो घट बचा लेगा समान ओना ही चंगा है। कहिंदे बेड़ी विच बैठे होइए बेड़ी डुबन लगे ते जे उहदे ते छाल मार के उतर जाइए बच जाइए उहदे नाल दी कोई रोई रीस नहीं है। ये तीन वचन कह के सतगुरु भाई साहब ने सिद्धांत दिता भी इस तरह जिहड़ा कोई अंतकाल वेले भी बचपना नहीं सांभिया चलो ते अपने वस की गल नहीं, जवानी नहीं सांभे बड़ेपे वेले आ जाए वैसे ते पहला आवे चंगी गल है, पर जेड़े वेले भी आवे तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवे। कहिंदे मेरा गुरु ए नहीं कहिंदा भी तू लेट हो गया, कहिंदे ओ कहेगा चल आ ते गया है पूरे मन नाल आया ते सिर ते हाथ रख के मुक्ति दी दात बख्शिश कर देंदे। एडा गुरु दयालु इसे करके गुरु के सवारो सतगुरां नूं बहुत सब तो वड्डा कहा गया, सब तो वड्डा आख्या गया ज्ञान ध्यान के च कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु कलगीधर पातशाह जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गद्दी ते शोभा पाउंदे ने उन्हां वर्गा भी कौन है गुरु के सवारो जेड़े ए त्रुट के बख्शिश करते ने साडे ते। इन गरीब सिखन को देओ पातशाही ये याद रखे हमरी गुरियाई। जेड़े त्रुट के कहिंदे ने मेरे ते सिख दा विच बहुत गूढ़ा नाता बड़ा गूढ़ा नाता, इस करके गुरु के सवारो धन गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते ने भाई शरीर मिलिया इस करके नाम जपिए। आओ दोबारा आखिरी पंक्तियां पढ़ के सतगुरां दे शब्द दी इस विचार नूं होर हाली समय है बेनती करा गुरु के सवारो। इस करके सानू जेड़ा गुरु साहब जी ने साडे उत्ते कृपा कीती उपदेश बख्शिश कीता है। उपदेश है गुरु नाल जुड़न लई नाम जपन लई, फिर जिहड़ियां असीं दातां लईआं ने समझना भी असीं गुरु दा परमेश्वर दा शुकराना कर रहे हैं। बाणी बोतात विच संगता सुखमनी साहब दा पाठ करदियां ने उहदे विच गुरु साहब सानूं इक इक गल दा जिक्र करदे ने कहिंदे जे प्रसाद छती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद
ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਣਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮਾਣਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਖਾਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਰਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂ

कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृ

दरबार में तेरो दरबारा सत्खंड सहनकारा लक्ष्मी खड़ी तुम्हें दरबारा सत्य।

पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भ्रम हरिय कर्म हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड।

पतास्तु हि चतस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग टटस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि।

त्वा प्रसाद कपित हुकमल हरि गज गद विभूत दारि गिद्वा मसान बास करे हुई करत है हुकमट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधे मरत है बिंद के सथैयता ही जिकी बडैया ते दमंदरा सदीव पाए ना गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है भूत बन चारि छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के भुछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जैया प्रिंग भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया दे दब गुलाब डाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड ज्ञान तिनो जानी पै बखानी ना है ऐसे न प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांधरी के जैया कह आदि से फिरैया ते तो भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भुछैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब थेन चारी रिखि के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अड्डे रुको कन्हैया नाम कंस को पथैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद बावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल परिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जटा थारी सती साचे बड्डे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधमुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद यक देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करोई करत है चंद्रमात शीतल न सूरस तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा और विष्णु कित वेद और पुराण कित सिमृत समूहन के होय होय बितय है मोन दी मतार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है पीर और पैगंबर कित गन न परत एत भूम हित होय के फेर भूम ही मिलाय है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अपमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिजदे करे अनेक दो बची कपट वेश पोसती अनेकता निवावत है शीश को कहा भय मल्ल जप काढ़त अनेक दंड सूतनो दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जप डाजो रह उर्धमुख मान तेना मुंडने हो रायो अद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कस पावे जगदीश को शीस पट कत जाके कान में खजूरा था से मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आंख को जरैया फल फूल को भचैया सदा बन को ब्रह्मिया और दूसरो न बोक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीन देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरा की बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी होय के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीतर पुकार पर शीत काल कुंजर अगत अनेकता पुकार ही कहा भय जप कल वत्र लियो कांसे बीच चीर चीर चोरटा कुठारन सो मार ही
कहां भयो फांसी डार बूढ़े जड़ दंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में जरत कतराण की परत कर पताल।

एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते कछ मछ कते उनको करत भच केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के कौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज दिन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदी नाम कानी वासी केतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केते बुम में गड़त केते सुअ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हर देवता विरोध हर दानव बड़े बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घास हर चंदन लगाए हर चुआचार बोझ हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गाह हर गोरन मनाए हर मड़ी मटली बहार वीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तपंत हर तापसी।

सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवान यचित्रे नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभंग भूतंग अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय छयाद अत्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय नर्पिखादं

परम प्रज्ञा कहु सर्वभूपं कहु नेह गृहं कहु देह दोखं कहु औखदी रोग के सोख सोखं कहु देव विद्या कहु दैत बाने कहु जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सादगी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं।

अखंड भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंशे जगत करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाथ जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास

भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पुत्र जानिय न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर मैं विशेख अन्न मानिय न जंत्र मैं न तंत्र मैं न मंत्र बस आवई पुराण यो पुराण नेत नेत कह बतावई न कर्म मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइये अगंज आदि देव है कहो सुख सुपाइये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है।

ना जाच है ना गंधर्व है ना नर है ना नार है ना चोर है ना साव है ना साह को कुमार है ना ने है ना गे है ना देह को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेद है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है।

रूप रे खरार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्वति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विशेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत गो करंत पाठ बेखी है। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए। सदीव सर्वलोक

सर्व ठहर रहे हो विराज धीराज राज प्रवीण जय श्री गंधर्व देव दानव न ब्रह्म क्षत्रिय नमाहे वैस नंगे बिखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील

तीर्थ जादरण देव पूजा गौर के नाधीन सर्व सबद पतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरण होत सोज सोद हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब।

जात पात ना गोत्र का था रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमा का जले थले मैं जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेत जानिए सब चार आदि देवा पार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्रोपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावे।

घंट का विराजे रुण झुण बाजे भ्रम भय भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग बाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज मंथन रिझे सभ न भजे रूह रणंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन चंड चक्रदन आदि गुरंग चाचरी प्रचोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृत्ति धूमराज विधुन संप्रलय

विपर खण दुर्जन धर खण तो नमर खण धर्म तुझे धूमराज विधुन संस्रोण सुन संसुम फन पाद न सोम्भ मथे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे।

जिह जात पात नहीं भेद भरम जिह रंग रूप नहीं एक धर्म जिह सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार जानी न जाय जिह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जिह सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जिह चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जिह खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जिह रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिजताग जल थल महीप बंधन दुरंत जिह नेत नेत निषिद्ध नुचरंत पायो न जाय जिह पैर पार दीनान दोह दहता उतार कई गोट इंद्र जिह पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जिह नेत

सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल होंगे काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को वोगध है के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है। जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीपन को मंड है ये श्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। भाई है न पार पार वार हूं को पार जाग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधावे पूर्वी न पार पावे असत अनास है। देवन को देव महादेव हूं के देव है। निरंजन अभेव नाथ अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है। कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ। भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है। दरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कानद्र के कूल के। हंसनी सिसी हरुम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी बलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपा सी चंदेरी गुड़ चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी ही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हल्ला बनेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगदार बकांसी बिलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के तुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी कंधारी गोर गखरी गदिजाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दयाता विनाश की

0: और फिर की होया कवि वचन कर दे कि जोधपुर दे अस्थान ते उस इलाके विच महाराज सच्चे पातशाह जी चाला पांदे
1: मिलियो अजीत सिंह बलहेरे
0: और बड़ी श्रद्धा सहित अपना हिरदे दा बल लै करके अजीत सिंह राज

0: ऐसा समा मिले कलगिया वालिया सानू फिर मिले लख वारी तेरे चरणा तो जाइए लख वारी बलिहारी महापुरख सिंह साहब कृपा की 11 दिन दे महापुरखां ने सवा लख जप जी दे जाप कराए संगतां सेवा सिमरन कीता तन मन होए निहाल कलगी धर जी एदां ही कृपा रखियो जोड़ी रखियो चरणा दे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह बोले सो निहाल
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे मिलके मूल मंत्र दा जाप। आदरणीय सिंह साहब जथेदार बाबा कुलवंत सिंह जी तख्त सचखंड श्री हजूर साहब उन्होंने असीसा बख्शिया हैं। हुणे आप जी आनंद माण रहे सी संत बाबा बलविंदर सिंह जी नानसर कुराली गुरां दी गोद विच सन्मान योग बाबा हरपाल सिंह जी बलबेड़ा गुरु के कीर्तनीय भाई सिमरनजीत सिंह जी सन्मान योग संत ज्ञानी अमीर सिंह जी मुखी जवद्दी टकसाल उन्हां वल्लों जवद्दी टकसाल दा हजूरी रागी जत्था हाजरी लवाउणगे। दो चार पल मिल के आपां सारे मूल मंत्र दा जाप ते शब्द कीर्तन एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी।

निर्मल संप्रदाय निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार आदरणीय श्री महंत स्वामी स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी उन्होंने अजीज शिष्य उन्होंने रचना तो कुछ पल रस मानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

छोटे पुराण लख सुरज लगया ध्यान बड़ी बात पुराण जिन करते करना किया जान नान मिथ मिथया करम सुजान बड़ी सजा सज।